वेरी गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, की हाल चाल है जी? उम्मीद है सब ठीक ठाक हो गए। इस सुनहरे जे मौसम दे विच सुनहरी जी आवाज दे नाल, सुनहरे जे प्रोग्राम दे नाल स्वागत स्वागत स्वागत, वी वेलकम यू ऑल।

बाबा जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर है। जुत्ती ते सारे तारे की सारे अंबरां दे विचों जिन्ने भी प्लैनेट्स ने भी लाके ला दियो जरूर। प्यार मोहब्बत दे विच बंदा की कुछ नहीं कर सकदा है ना। जिवें प्यार मोहब्बत दियां तंदां जिहड़ियां थोड़े नाल जुड़ियां होईयां ने ओह दिन ब दिन जदों मजबूत हुंदियां ने सानूं भी खिच पैंदी है कि असीं भी मुड़ के थोड़े कोल जाइए ते थोड़े लई कुछ ना कुछ नवेकला लैके आईए। बिल्कुल अज लाइव ऑन लोकेशन साडी टीम पहुंची हुई है जी। सिद्धू साहब खुद पहुंचे हुए ने ग्रांड होम फर्नीचर ते। लोकेशन है 6685 टॉमकिन रोड। उथे पहुंचो जी। ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड सेल लगी हुई है। काफी सारी बचत की जा सकती है। लाइव ऑन लोकेशन का फायदा यह होंगे कि पॉपअप लोकेशन जुड़िया ने टाइम बीइंग वास्ते जेलां लगदिया ने उसका फायदा यही है कि कुछ चंद पैसे जड़े ने बच सकते हैं। फ्री गिफ्ट जड़े ने ज्यादा मिल जाते हैं। सो जाके अज का दिन वधिया है जी। जिवें सिद्धू साहब दस रहे कि तुसी पिकनिक वास्ते तैयारी खिंची हुई है तो जाते लंघते वढ़ते उधरले पासे गेड़ा जरूर लगा के आयो। की पता पसंद आ जाता है कुछ तो उस गिफ्ट जड़े ने वाह कमाल थोड़ा मिल सकते ने जी। सो अपना लक जड़ा है अजमाया जा सकता है अज ग्रैंड फर्नीचर की इस सेल से। अगला नंबर थोड़ा देन जा रही है जी मनु शर्मा होना का कि थोनू पता है कि ओंटारियो ऑटो इंश्योरेंस में नवे चेंजेस जड़े ने आ रहे ने। जुलाई तो बाद अपनी पॉलिसी रिन्यू कराने वाले ड्राइवर्स नू एक्सीडेंट बेनिफिट्स ते अदर कवरेजेस लई नवे फैसले न्यू डिसीजंस करने पास करने पै सकते ने। सो बट द क्वेश्चन इज कि तुसी समझदे हो कि ए बदलाव जड़ा है ए चेंज थोड़े ते थोड़ी फैमिली दी सेफ्टी उत्ते की असर कर सकता है जी। सिर्फ घट प्रीमियम देख के डिसीजन ना लियो। सही कवरेज होना उस तो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जे थोड़ी ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल आने वाली है या तुसी अपने घर की रिन्यूअल चाहते हो बिजनेस इंश्योरेंस लई बेटर कवरेज चाहते हो रेट्स बहुत अच्छे लभ रहे हो तो मनु शर्मा होरां दा नंबर तुसी जरूर लिख के रखो 289-952-9532 289-952-9532 is the number. इस नंबर ते कॉल की जा सकती है ते मनु शर्मा होरां दे नाल गलबात की जा सकती है। लो जी ANJ ऑटोमोटिव रिपेयर दा नंबर भी थोनू दे दिने। कहंदे कारां रिपेयर करदे आं असीं ते ऐसी नवी नवेकली कार बना दिंदे ते पता ही नहीं चलदा। प्रोवाइड कर रहे ने नवे समर टायर्स चेंज करदे ने टायर्स व्हील अलाइनमेंट करवानी होवे हर तरह दा सस्पेंशन दा काम करना होवे इंजन दा काम करवाना होवे ब्रेकां दा काम करवाना होवे एग्जॉस्ट दा काम करवाना होवे ऑयल चेंज करवाना होवे रस्ट प्रूफ करानी होवे गड्डी तां बस फिर ANJ ऑटोमोटिव रिपेयर। अच्छा जी जे इन्हां दे कोल जांदे हो ते एक प्लस पॉइंट ए है कि दे स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एंड पंजाबी। सो थोनू किते भी ऑड नहीं लगेगा कि हाँ जी मैं हुण उत्थे जाके किवें बोलांगा कि मेरे मेरी गड्डी च ए जिहड़ा है दिक्कत आ रही है। कई बार सानू लफ्ज लभदे नहीं है ना तो औखा हो जाता फिर बंदा कहिंदा छड्ड परा मैं इत्थे नहीं जाऊंगा मैं कितें होर जाना तो सारे बेनीफिट्स छड्ड दिंदा। सो ANJ ऑटोमोटिव रिपेयर ते तुसी गेड़ा जरूर लगायो 91 हेली रोड बोल्टन हाईवे 50 ते मेफील्ड दा इंटरसेक्शन है जी होम डिपो दे लागी है। नंबर नोट कर लेने 289-503-6726 नाल दी नाल दूजा नंबर 905-857-7596 इज द नंबर। इस नंबर ते कॉल करना बिल्कुल भी ना भुलियो।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 7 2 V23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी। बिल्कुल ना भूलिया जे, लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, ता कौन भरेगा तुहाडे घर दी मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला

बात है मित्रो, मरू मरू क्यों करना। बिल्कुल जिंदगी दित्ती है रब ने, सेहत वधिया, सब कुछ वधिया, ते मरू मरू क्यों करना। जिंदगी जियो खुल के, ते गलबात चल रही सी, बंदा उदास मन होवे ते किद्दां उन्नू वधिया खुश मिजाज बनाया जा सकता है, किद्दां उहदे मन नू होर भी दुरुस्त किया जा सकता है। ते कहिंदे आ गाने गुणे दे नाल भी, गाने सुन के भी हो सकता है। कहिंदे आ जे तुसी वॉक कर सको ना नेचर दे विच, खास करके ते पार्क विच जाके नेचर दे विच वॉक करो, उहदे नाल भी तुहाडा जिहड़ा मन है वह भी बड़ा सही हुंदा है, तुहाडी नींद पूरी होवे उहदे नाल भी। ते खास गल जिन्हां दे घर आ जिन्हां ने पैट रखे हुए आ, जिन्हां दे घर पैट ने, कहिंदे पैट रखे होण दे नाल बंदे दा मन बड़ा सही हो जांदा। बंदा घर कुत्ता रखिया होवे, बिल्ली रखी होवे, बंदा उहदे नाल खेडदा, सौ गल्लां बातां इधर उधर करदा, ते उहदे नाल भी बंदे दा मन बड़ा सही हो जांदा। एक थैरेपी दा ही काम करदे आ घर दे विच जदों पैट्स होण, ते होर बहुत सारियां चीज़ां ने। तुहाडा की कहना है, 905-673-3339-05-673-3337। एक ना बड़े ही शानदार मैं देख रहा सी सर्वे दे विच ए चीज़ आई है, कहिंदे आ बंदा ना उदास बैठा ते धक्के दे नाल ना उदां ही बस एक जाली समाइल नहीं हुंदी, एक फेक समाइल, तुसी बैठे हो बस समाइल करनी है, तुहाडा ओह हासा नहीं आ रहा, बस तुसी समाइल करनी है। कहिंदे हुंदा की है, जिहड़ी जाली समाइल भी हुंदी है ना उहदे नाल तुहाडा मूड बेहतर हो जांदा। आराम नाल बैठे हो, बस इदां ही समाइल वाला मूंह बना के देखो, ते ओह तुहाडे चेहरे ते तुहानू उहदा अहसास हुंदा, तुहानू पता हुंदा भी हाँ यार मैं इदां ही फेक समाइल कीती है, पर इहदे नाल मेरे मूँह दे जिहड़े मसल्स है इहनां दे विच फर्क पै गया। करके देखियो, मैनूं पता कई बंदे हुण इस टाइम फेक समाइल कर रहे होणे ने सुण के, इदां इदां करके शीशे वल देख के, पर फर्क पैंदा। ये वाकई ही ट्राई किया, मैं भी ट्राई कर रहा सी, ते इहदे नाल फर्क जरूर पैंदा।

0: हाँ, और उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5500 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: पातशाही दसवें कब्रबाज बेनती चौपाई अमरी करो हाथ है अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट समय तुम पाओ पाप बात दे मोहे बचाओ सुखी बसे मानो परिवार जीवत सिख समय कर पारा मोरे छान कर दे कर आज सुमर पूरन होए हमारी आशा तुर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छोड़ कोई अब न जाओ जो कर जाओ सो तुमके आओ जीवत से हमारी तारी है चुन चुन शक्ल हमारी भारी है आप बात है मुझे उपले पल पाल पाता सिंवरे जो सदा हमारे बच्चा जीस तुझ जो पलियो रच्छा राख ले हो महरा कड़वारी सारे पसंद सहाय प्यारी तीन बंद दुश्मन के

जमने तारे सब लोग सवारा जम शिकार है तारे हमारा जमने तारे सब जगत बनायो देवी कैसे

0: ऑनलाइन स्टोर।
1: यहाँ से आपको ढाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलिनी ड्राइव, यूनिट 9 और 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 9057999400।

पातु सुसप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः संवत्सरमुपासित्वा साम्राज्यपदवीं लभेत्।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम। सबसे पहले हम अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं और तो तभी हमारी आवाज आप तक पहुंचती है। और आप सभी का धन्यवाद करते हैं तो क्योंकि आप इतने सालों से हमें सपोर्ट करते आ रहे हो, हमारे प्रोग्राम को सुनते आ रहे हो, सराहते आ रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सबसे पहले परमात्मा का नाम ज्यादा प्ले करते हैं ताकि आपके लिए आपके घर में कार में अच्छी वाइब्स हो जाएं। तो इतनी लंबे समय के लिए आपके लिए ये सारा कुछ हम प्ले करते हैं पॉजिटिव फीलिंग के लिए। गाने तो सभी सुन लेते हैं कहीं ना कहीं के, तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आज इस वीकेंड मौसम बहुत अच्छा है, ना बहुत गर्मी है ना बहुत ठंड है, ठंड का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। बस बहुत ज्यादा गर्मी थी कल थोड़ा, तो लेकिन बाद में बारिश हो गई तो थोड़ा बेहतर हो गया। आज तो ठीक ही है, ना इतनी ज्यादा गर्मी नहीं हुई है, थोड़ी सी बारिश हो गई बीच में, थोड़ा सा धूप भी आ गई। तो आइए इसी को एंजॉय करते रहेंगे। जो भी ऊपर वाला हमें देगा उसका हम धन्यवाद करते हैं और उससे प्रे करते हैं कि इस दुनिया की प्रोटेक्शन के लिए और इस दुनिया में शांति के लिए, फॉर द पीस ऑफ द वर्ल्ड। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना चाहते हो और बढ़िया प्राइस पे लेना चाहते हो तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है और आप उनकी वीकली मंथली स्पेशल देखने के लिए आप बढ़िया टीवी लेंगे। आउटडोर फर्नीचर लेना है, घर किचन की गैजेट्स लेटेस्ट एडवांस चाहिए, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए। फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 9057990045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने मूविंग करनी है तो HK मूवर्स कनाडा भर में मूव करने के लिए मदद करते हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं, बहुत सारी उनकी टीम्स हैं। तो अपना ट्रक बुक कर लीजिए मूविंग के लिए 416-524-7604 पे HK मूवर्स को आप कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने कोलिजन का काम करवाना है, आप लंदन के इलाके में रहते हैं तो आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में गोर रोड पे मौजूद है, तो वहाँ पे आप उनसे उनकी सेवाएं ले सकते हैं। तो मास्टर कोलिजन डिपो डॉट कॉम पर जाइएगा और उनकी सेवाएं लीजिएगा। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है किचन वाटरलू गोल्फ में तो आप सेव फ्रेंड को कॉल कीजिए 519-546-1260। आपको खाना ऑर्डर करना है, केटरिंग, लाइव कुकिंग करवानी है तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट न्यूली रेनोवेटेड है, क्रेडिट व्यू एंड ब्रिटानिया भी मौजूद है। तो और जानकारी के लिए आप बुकिंग के लिए 905-814-1730 पर कॉल कर सकते हैं न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कोई बड़ा प्यारा सा गीत लता जी का गाया हुआ। तो फिर इसी तरह बहुत सारे सिंगर हैं जो उनके गाने हम आपको आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए फिर आपको जो भूले बिसरे गीत भी हैं वो आपको सुनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको थोड़ा जो हर रोज सुनते हैं थोड़ा आपको जो गोल्डन एज है, बहुत खूबसूरत गाने हैं, आपकी जो शाम है वो बढ़िया।

आपके लिए ये कोई और ही जैसे आर्टिस्ट है वो गा रहे हैं, मैं ओरिजिनल लता जी का ही गाना ओरिजिनल लता जी का ही लगाना चाहती हूँ, तो लेट्स गो टू द सॉन्ग, ओरिजिनल सॉन्ग द सोम।

0: चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए।
1: जी हाँ, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए, ये फिल्माया गया था लता जी और किशोर कुमार का गाया हुआ गीत है, देवानंद और जीनत अमान, हीरा पन्ना फिल्म। तो बड़ी बहुत बढ़िया फिल्म है, आपको मौका मिले तो जरूर देखिएगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अब आपको अगर किसी किस्म का फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया टीवी, लेटेस्ट किचन गैजेट्स, आउटडोर फर्नीचर, लेटेस्ट आपको बारबेक्यू लेना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनके ग्वाल्स में है। तो और जानकारी के लिए, स्पेशल्स देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स.com पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक करिएगा 905-7900-45-7990-045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार और अब अगर आपने मूव होना है तो आप HK मूवर्स को कॉल कीजिएगा, वो कनाडा भर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं। तो आप उनको कॉल कर लीजिए, अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-4164-526-52467-04 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको धड़कता भड़कता गीत देसी गर्ल।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी। गाना आपके लिए सुनिधि चौहान, विशाल ददलानी उनकी तरफ से गाया गया, और अभिषेक और प्रियंका जॉन इब्राहिम दोस्ताना फिल्म में फिल्माया गया था। बहुत ही बढ़िया गाना है, उम्मीद रखती हूँ आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो अब आपके लिए, जब नई नई शादी होती है तो फिर घूंघट होता है, वो एक मजाज होता है कि वो दर्शाया गया है पुराने जमाने से घूंघट नहीं।

0: लेना 0525-0055। तो अगर आपने मूव होना है तो एचके मूवर्स आप उनको कॉल कीजिए 416-524-4146-524-6704। और फिर आपने किसी किस्म की भी आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेटेस्ट आपको टेक्नोलॉजी वाला सारा की भी सारा सामान लेना है घर का, तो आप टॉप ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, अपने ऑर्डर बुक कीजिए 905-700-045 9057-99-0045 टॉप ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स।
1: नहीं खोलूं, नहीं खोलूं।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जानकी सर में, और उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, गाने आपको पसंद आ रहे होंगे। तो आप हमारे प्रोग्राम को पसंद आया हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है। तो आइए अभी काफी अच्छे अच्छे अभी मास्टर स्लीम का प्रोग्राम आपके लिए होने जा रहा है टोरंटो में, और ये आपके लिए 24 जुलाई को होने जा रहा है। तो मास्टर स्लीम को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, तो कमाल की गायकी है उनकी, क्लासिकल में गाते हैं, तो आप जरूर जाइएगा और उनको सुनिएगा। और टीवी पे तो हम उनको काफी देखते रहते हैं। तो आइए आपके लिए थोड़ी सी आपके लिए मेरे ख्याल में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी, कोई बढ़िया सी बच्चों, आजकल समर है तो बच्चों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ, जैसे कि जिनमें कुछ मॉरल हो, कुछ उनको सीखने को मिले, ऐसे में एक अच्छी सी कहानी है। तो जैसे कि कभी आप हमेशा जब किसी से मिलते हो, किसी से आगे प्यार बढ़ाते हो, तो आप सबसे पहली उम्मीद आपकी यही होती है कि

आपके साथ वो लोग अच्छा बर्ताव करेंगे और आपसे वफादार रहेंगे। यही एक चीज सबसे बड़ी बात होती है किसी भी रिश्ते में। तो कहानी है कि पहले वो बातचीत ऐसे होती है, लेकिन अमित बार बार साधना को पुकार रहा था, लेकिन साधना उसे अनसुना करके वहां से चली जाती है। अमित हताश और निराश होकर वहीं बैठ जाता है। सड़क के किनारे पटरी पर ना जाने कितनी देर वह बैठा रहता है, सोचता रहता है। फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर साधना को मनाने चल देता है। और इस इधर साधना की जो आंखों में आंसू लिए तेज कदमों से अपने घर की ओर चल दी थी। घर पहुंचकर साधना जी सीधे अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट जाती है। तभी उसकी मम्मी शोभा जी उसके पास आती है। बेटी, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है। अमित से लड़ाई हो गई क्या? मम्मी, उसका नाम मत लो, मैं अब उससे कभी नहीं मिलूंगी, बहुत बुरा है वो। आज आप जाओ, इस समय मुझे किसी से बात नहीं करनी, साधना ने बोला, और बगैर जवाब का इंतजार करे वह दूसरी ओर मुंह करके लेट गई। शोभा जी बाहर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। साधना की परेशानी ने उन्हें भी परेशान कर दिया था। आखिर ऐसी क्या बात थी जो साधना इतनी परेशान है? यही सोचकर शोभा भी इधर उधर टहलने लगती है। तभी डोरबेल बजती है। शोभा जी गेट खोलती है तो सामने अमित खड़ा था। आंटी जी, साधना है क्या? शोभा जी ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और पूछा, बेटा क्या बात हो गई, वो बहुत परेशान है। कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही गुस्सा हो गई, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? शोभा जी के हाँ कहने पर अमित साधना के कमरे में पहुंच जाता है। अचानक अमित को देखकर साधना उठकर बैठ जाती है और जोर से चिल्लाने लगी, चले जाओ यहाँ से, आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश मत करना। अमित बार बार साधना को मनाता रहा, लेकिन वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अमित ने जाते हुए बस इतना ही कहा, साधना आज तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन मेरी बात पर गौर करना, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, और हाँ, मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। अमित के बाहर जाते ही शोभा जी फिर से बोली, ये क्या की बेटी, अमित कितना अच्छा है, तूने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। आप रोती रही। आखिर हुआ क्या था? दरअसल अमित और साधना की मुलाकात एक बस स्टैंड पर हुई थी। अमित अपने घर जा रहा था, रात का समय था। साधना भी उसके गांव के लिए बस के इंतजार में बैठी थी। बस स्टैंड पर मुश्किल से दो चार लोग होंगे। साधना बार बार घड़ी देख रही थी। अमित उससे वही उसके पास वाले बेंच में बैठा था। साधना अपनी जगह से उठी और अमित के पास जाकर बोली, आपको पता है बुलंदशहर जाने वाली बस कितनी देर में आने आएगी? आपको बुलंदशहर जाना है? अमित ने पूछा। तो साधना बोली, हाँ, वहां से आगे गांव में जाना है। अमित ने कहा, मेरी बात मानिए तो वापस चले जाइए, जहाँ बस का कुछ पता नहीं कब आएगी, रात ज्यादा हो रही है, अगर बस भी आ भी गई तो रात को 2 बजे आपके बुलंदशहर उतरेगी। रात में गांव कैसे जाएंगी, सुबह की बस पकड़ लेना। साधना डर गई, मेरा कोई और ठिकाना नहीं है, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? अमित ये सुनकर बोला, नहीं, यहाँ सेफ नहीं है, आप इस शहर में किसी को नहीं जानती। साधना ने डरते हुए कहा, मैं किसी के बुलाने पर नौकरी के लिए आई थी, उसने मुझसे सारे पैसे ले लिए और नौकरी भी नहीं लगवाई, अब वापस जा रही हूँ। अमित बोला, वैसे तो मैं आपको नहीं जानता, पर अगर ऐसा है तो आप मेरे घर चलिए, सुबह तक रुकिएगा और सुबह बस पकड़ लेना, घबराइए मत, यहीं पास में मेरा घर है, घर में मम्मी है, आप सुरक्षित रहेंगी। साधना के पास कोई साधन नहीं था, वह अमित के घर चली गई। अगले दिन जब वे जाने लगी तो अमित ने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा और उसे अपने ऑफिस में नौकरी की बात करने के लिए कहा। एक दिन और साधना ने रुकने का फैसला किया। शाम को अमित आया तो उसने बताया कि उसकी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। साधना बहुत खुश हुई। अगले दिन से वह ऑफिस जाने लगी। बाद में उसने किराए पर फ्लैट ले लिया और गांव से अपनी माँ को बुला लिया। धीरे धीरे अमित और साधना एक दूसरे को पसंद करने लगे। साधना
साधना का प्रमोशन हो गया, उसकी सैलरी भी अब बढ़ गई थी। साधना एक अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। मॉडर्न सोसाइटी में उठना बैठना पार्टी करना उसका रोज का काम हो गया। इधर अमित ने अपनी कंपनी छोड़ दी, वह दूसरे शहर में नौकरी करने लगा। धीरे धीरे अमित और साधना में दूरी बढ़ने लगी। अमित के दोस्त उसे बताते कि साधना किसी और लड़के साथ घूमती है, लेकिन अमित इसकी परवाह नहीं करता। धीरे धीरे अमित का भ्रम टूटने लगा। साधना उसको फोन नहीं उठाती थी, मैसेज का जवाब नहीं देती थी। एक दिन अमित अपनी माँ से मिलने आया तो उसने साधना को बाहर मिलने के लिए बुलाया। अमित ने साधना के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और दूसरे शहर में उसके साथ चलने के लिए कहा। साधना ने साफ मना कर दिया। अमित ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नौकरी का भी इंतजाम कर लिया है। जितना पैकेज यहाँ मिल रहा है वहाँ उससे अच्छा मिल जाएगा। इतना कहकर अमित और साधना ने कही सुनी हो रही थी। अभी तभी अमित ने कहा, साधना भूलो मत, तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। उस समय तुम मेरे प्यार के लिए तरसती थी, आज मेरा फोन भी नहीं उठाती। साफ साफ बताओ बात क्या है। साधना बोली, अमित मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जीवन में शादी सब कुछ नहीं होती। यहाँ आजादी से जीना ये सब छोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। यह सुनकर अमित को गुस्सा आया और उसने कहा, बात यह है कि तुम किसी और से प्यार करने लगी हो। मैं अब तुम्हें पसंद नहीं हूँ, मेरी दोस्तों ने सब बता दिया है। साधना को बहुत गुस्सा आया और वह अमित को उल्टा सीधा सुनाकर अपने घर आ गई। अमित साधना से बेइज्जत होकर अगले दिन ही अपनी

क्या बात है, प्रोग्राम है पंजाबी दा। मैं कहण लग्या सीगा ते बहुत ही गर्मा गर्म प्रोग्राम, पर हुण पता नहीं लगदा जी मैं प्रोग्राम गर्मा गर्म पेश कर दिता। अगे यार कड़ाके दी गर्मी है, तुसीं कहोगे नवी यार पहला 35 डिग्री सी, तुसी प्रोग्राम इन्ना गम गर्म करता होना, लगता जिवें कि 50 डिग्री टैंपरेचर है। सो कोई ना, प्रोग्राम थोड़ा ठंडा रखते हैं ते देख

0: स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5000 पर कॉल कीजिए 9054560733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: पातशाही दसवें कब्रबाज बेनती चौपाई अमरी करो हाथ है इच्छा पूर्ण होए जिंदगी इच्छा अब चरणन मन रहे तुम्हारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सदा तुम पाओ साफ बात।

पूरण होए हमारी आशा, दूर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छोड़ कोई अमर न जाओ, जो कर जाओ सो तुमके पाओ, जीवत से कम हमारे भारी है, चुन चुन शक्ल हमारे भारी है, आप बात है मुझे उपर है, मरने काल पाता से निवर है, जो सदा हमारे बच्चा, जीवस तुझ जो करियो रच्छा, राखने हो महरा खड़वारी, सारे पसंद सहाये प्यारी, इन बंद दुश्मन के

कोई उसकी चाह सके न कोई एक बार जिनको है सहारा देता है तुम्हारा इंद्र नाम तिहारो दुष्टि को तेरा सड़क के तुम्हें शरण तिहारी आप।

0: राजा मालवा द्वापा वेडिंग स्टोर।
1: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलिनी ड्राइव यूनिट 9 और 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 9057999400।

कटिम पातु नभो मणि द्वादशात्मा कटिम पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्कर जंघे मे पातु मार्तांडो गुल्फो पातु तिशां पति पादौ पातु दिनमणि पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्य कवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो उच्यते नात्र संशयः।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम। सबसे पहले हम अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं और तो तभी हमारी आवाज आप तक पहुंचती है, और आप सभी का धन्यवाद करते हैं तो क्योंकि आप इतने सालों से हमें सपोर्ट करते आ रहे हो, हमारे प्रोग्राम को सुनते आ रहे हो, सराहते आ रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सबसे पहले परमात्मा का नाम ज्यादा प्ले करते हैं ताकि आपके लिए आपके घर में कार में अच्छी वाइब्स हो जाएं। तो इतनी लंबे समय के लिए आपके लिए ये सारा कुछ हम प्ले करते हैं पॉजिटिव फीलिंग के लिए। गाने तो सभी सुन लेते हैं कहीं ना कहीं पे, तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आज इस वीकेंड मौसम बहुत अच्छा है, ना बहुत गर्मी है ना बहुत ठंड है, ठंड का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, बस बहुत ज्यादा गर्मी थी कल थोड़ा तो, लेकिन बाद में बारिश हो गई तो थोड़ा बेहतर हो गया। आज तो ठीक ही है, ना इतनी ज्यादा गर्मी नहीं हुई है, थोड़ी सी बारिश हो गई बीच में, थोड़ा सा धूप भी आ गई। तो आइए इसी को एंजॉय करते रहेंगे, जो भी ऊपर वाला हमें देगा उसका हम धन्यवाद करते हैं और उससे प्रे करते हैं कि इस दुनिया की प्रोटेक्शन के लिए और इस दुनिया में शांति के लिए, फॉर द पीस ऑफ द वर्ल्ड। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना चाहते हो और बढ़िया प्राइस पे लेना चाहते हो तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है, और आप उनकी वीकली मंथली स्पेशल देखने के लिए आप बढ़िया टीवी लेंगे, आउटडोर फर्नीचर लेना है, घर किचन की गैजेट्स लेटेस्ट एडवांस चाहिए, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए। फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 9057990045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने मूविंग करनी है तो HK मूवर्स कनाडा भर में मूव करने के लिए मदद करते हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं, बहुत सारी उनकी टीम्स हैं। तो अपना ट्रक बुक कर लीजिए मूविंग के लिए 416-524-7604 पे HK मूवर्स को आप कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने कोलिजन का काम करवाना है, आप लंदन के इलाके में रहते हैं तो आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में गोर रोड पे मौजूद है, तो वहाँ पे आप उनसे उनकी सेवाएं ले सकते हैं। तो मास्टर कोलिजन डिपो डॉट कॉम पर जाइएगा और उनकी सेवाएं लीजिएगा। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है किचन वाटरलू गोल्फ में तो आप सेव फंड को कॉल कीजिए 519-546-1260। आपको खाना ऑर्डर करना है, केटरिंग, लाइव कुकिंग करवानी है तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट न्यूली रेनोवेटेड है, क्रेडिट व्यू एंड ब्रिटानिया भी मौजूद है। तो और जानकारी के लिए आप बुकिंग के लिए 905-814-1730 पर कॉल कर सकते हैं, न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। तो आइए अब आपको सुनाते हैं ये कोई बड़ा प्यारा सा गीत लता जी का गाया हुआ। तो फिर इसी तरह बहुत सारे सिंगर हैं जो उनके गाने हम आपको आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए फिर आपको जो भूले बिसरे गीत भी हैं वो आपको सुनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको थोड़ा जो हर रोज सुनते हैं थोड़ा आपको जो गोल्डन एज है बहुत खूबसूरत गाने हैं, आपकी जो शाम है वो बढ़िया।

आपके लिए ये कोई और ही जैसे आर्टिस्ट है वो गा रहे हैं, ओरिजिनल लता जी का ही गाना, ओरिजिनल लता जी का ही लगाना चाहती हूँ, तो लेट्स गो टू द सॉन्ग, ओरिजिनल सॉन्ग द सो।

0: चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए।
1: जी हाँ, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए, ये फिल्माया गया था लता जी और किशोर कुमार का गाया हुआ गीत है, देवानंद और जीना तमान हीरा पन्ना फिल्म। तो बड़ी बहुत बढ़िया फिल्म है, आपको मौका मिले तो जरूर देखिएगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अब आपको अगर किसी किस्म का फ्रिज स्टोव वॉशर ड्रायर बढ़िया टीवी लेटेस्ट किचन गैजेट आउटडोर फर्नीचर लेटेस्ट आपको बारबेक्यू लेना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनके ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए स्पेशल्स देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स.com पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक करिएगा 905-7900-45-799-00-45 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार और अब अगर आपने मूव होना है तो आप HK मूवर्स को कॉल कीजिएगा और कनाडा भर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं। तो आप उनको कॉल कर लीजिए, अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-4164-526-52-4607-04 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको धड़कता भड़कता गीत देसी गर्ल।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी गाना। आपके लिए सुनिधि चौहान, विशाल रदलानी उनकी तरफ से गाया गया और अभिषेक और प्रियंका जॉन इब्राहिम दोस्ताना फिल्म में फिल्माया गया था। बहुत ही बढ़िया गाना है, उम्मीद रखती हूँ आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो अब आपके लिए जब नई नई शादी होती है तो फिर घूंघट होता है, वो एक एक मजाज होता है कि वो दर्शाया गया है पुराने जमाने से। घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तो रे आगे। तो ये गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो पहले आपको बता दें कि अगर आपने मास्टर कलेक्शन डिपू आपके लिए, आप लंदन में मौजूद हैं, तो अगर आपने किसी किस्म का भी कलेक्शन का काम करवाना है लंदन के आसपास के इलाके में, आप मास्टर कलेक्शन डिपू गोर रोड पे मौजूद है लंदन में, आप वहाँ पे जाइए, उनकी सेवाएं लीजिए। तो मास्टर कलेक्शन डिपू काम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी लीजिए, फिर उनको कॉल करिएगा और सेवाएं लीजिएगा। और अब अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर 715 सिस्मत रोड में मौजूद है। तो और जानकारी के लिए 905-625-0055 पे कॉल कीजिए, 905-625-0055। तो अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आप उनको कॉल कीजिए 416-544-4165-24-67-04। और फिर आपने किसी किस्म की भी आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेटेस्ट आपको टेक्नोलॉजी वाला सारा की भी सारा सामान लेना है घर का, तो आप टॉप ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, अपने ऑर्डर बुक कीजिए 905-700-045 905-799-0045 टॉप ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जानकी सर में, और उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, गाने आपको पसंद आ रहे होंगे। तो आप हमारे प्रोग्राम को पसंद आया हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है। तो आइए अभी काफी अच्छे अच्छे अभी मास्टर स्लीम का प्रोग्राम आपके लिए होने जा रहा है टोरंटो में, और ये आपके लिए 24 जुलाई को होने जा रहा है। तो मास्टर स्लीम को मैं बहुत सालों से जानती हूँ।

ऐसे में एक अच्छी सी कहानी है। तो जैसे कि कभी आप हमेशा जब किसी से मिलते हो, किसी से आगे प्यार बढ़ाते हो, तो आप सबसे पहली उम्मीद आपकी यही होती है कि आपके साथ वो लोग अच्छा बर्ताव करेंगे और आपसे वफादार रहेंगे। यही एक चीज सबसे बड़ी बात होती है किसी भी रिश्ते में। तो कहानी है कि पहले वो बातचीत ऐसे होती है, लेकिन अमित बार बार साधना को पुकार रहा था, लेकिन साधना उसे अनसुना करके वहां से चली जाती है। अमित हताश और निराश होकर वहीं बैठ जाता है। सड़क के किनारे पटरी पर ना जाने कितनी देर वह बैठा रहता है, सोचता रहता है। फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर साधना को मनाने चल देता है। और इस इधर साधना की जो आंखों में आंसू लिए तेज कदमों से अपने घर की ओर चल दी थी। घर पहुंचकर साधना जी सीधे अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट जाती है। तभी उसकी मम्मी शोभा जी उसके पास आती है। बेटी, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है। अमित से लड़ाई हो गई क्या? मम्मी, उसका नाम मत लो, मैं अब उससे कभी नहीं मिलूंगी, बहुत बुरा है वो। आज आप जाओ, इस समय मुझे किसी से बात नहीं करनी, साधना ने बोला, और बगैर जवाब का इंतजार करे वह दूसरी ओर मुंह करके लेट गई। शोभा जी बाहर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। साधना की परेशानी ने उन्हें भी परेशान कर दिया था। आखिर ऐसी क्या बात थी जो साधना इतनी परेशान है? यही सोचकर शोभा भी इधर उधर टहलने लगती है। तभी डोरबेल बजती है। शोभा जी गेट खोलती है तो सामने अमित खड़ा था। आंटी जी, साधना है क्या? शोभा जी ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और पूछा, बेटा क्या बात हो गई, वो बहुत परेशान है। कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही गुस्सा हो गई, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? शोभा जी के हाँ कहने पर अमित साधना के कमरे में पहुंच जाता है। अचानक अमित को देखकर साधना उठकर बैठ जाती है और जोर से चिल्लाने लगी, चले जाओ यहाँ से, आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश मत करना। अमित बार बार साधना को मनाता रहा, लेकिन वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अमित ने जाते हुए बस इतना ही कहा, साधना आज तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन मेरी बात पर गौर करना, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, और हाँ, मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। अमित के बाहर जाते ही शोभा जी फिर से बोली, ये क्या की बेटी, अमित कितना अच्छा है, तूने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। आप रोती रही। आखिर हुआ क्या था? दरअसल अमित और साधना की मुलाकात एक बस स्टैंड पर हुई थी। अमित अपने घर जा रहा था, रात का समय था। साधना भी उसके गांव के लिए बस के इंतजार में बैठी थी। बस स्टैंड पर मुश्किल से दो चार लोग होंगे। साधना बार बार घड़ी देख रही थी। अमित उससे वही उसके पास वाले बेंच में बैठा था। साधना अपनी जगह से उठी और अमित के पास जाकर बोली, आपको पता है बुलंदशहर जाने वाली बस कितनी देर में आने आएगी? आपको बुलंदशहर जाना है? अमित ने पूछा। तो साधना बोली, हाँ, वहां से आगे गांव में जाना है। अमित ने कहा, मेरी बात मानिए तो वापस चले जाइए, जहाँ बस का कुछ पता नहीं कब आएगी, रात ज्यादा हो रही है। अगर बस भी आ भी गई तो रात को 2 बजे आपके बुलंदशहर उतरेगी। रात में गांव कैसे जाएंगी, सुबह की बस पकड़ लेना। साधना डर गई, मेरा कोई और ठिकाना नहीं है, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? अमित ये सुनकर बोला, नहीं, यहाँ सेफ नहीं है, आप इस शहर में किसी को नहीं जानती। साधना ने डरते हुए कहा, मैं किसी के बुलाने पर नौकरी के लिए आई थी, उसने मुझसे सारे पैसे ले लिए और नौकरी भी नहीं लगवाई, अब वापस जा रही हूँ। अमित बोला, वैसे तो मैं आपको नहीं जानता, पर अगर ऐसा है तो आप मेरे घर चलिए, सुबह तक रुकिएगा और सुबह बस पकड़ लेना, घबराइए मत, यहीं पास में मेरा घर है, घर में मम्मी है, आप सुरक्षित रहेंगी। साधना के पास कोई साधन नहीं था, वह अमित के घर चली गई। अगले दिन जब वे जाने लगी तो अमित ने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा और उसे अपने ऑफिस में नौकरी की बात करने के लिए कहा। एक दिन और साधना ने रुकने का

फैसला किया। शाम को अमित आया तो उसने बताया कि उसकी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। साधना बहुत खुश हुई। अगले दिन से वह ऑफिस जाने लगी। बाद में उसने किराए पर फ्लैट ले लिया और गांव से अपनी माँ को बुला लिया। धीरे धीरे अमित और साधना एक दूसरे को पसंद करने लगे। साधना का प्रमोशन हो गया, उसकी सैलरी भी अब बढ़ गई थी। साधना एक अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। मॉडर्न सोसाइटी में उठना बैठना पार्टी करना उसका रोज का काम हो गया। इधर अमित ने अपनी कंपनी छोड़ दी, वह दूसरे शहर में नौकरी करने लगा। धीरे धीरे अमित और साधना में दूरी बढ़ने लगी। अमित के दोस्त उसे बताते कि साधना किसी और लड़के साथ घूमती है, लेकिन अमित इसकी परवाह नहीं करता। धीरे धीरे अमित का भ्रम टूटने लगा। साधना उसको फोन नहीं उठाती थी, मैसेज का जवाब नहीं देती थी। एक दिन अमित अपनी माँ से मिला मिलने आया तो उसने

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट

दिया दिखाए, यह तन अखुट न निखुट न जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए, अपने सतगुर का सदबल जाई, गुर कृपा ते हर मन वसाई, से धनवंत

न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मह वसै प्रभ को सोए, गुरमति घट प्रगट हो।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi se anu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection kala to chutkara. Bina vyaj nikiya nikiya kishta. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दे हो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6474088 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।
3: नजरिया प्रोग्राम नाल जुड़ चुके दोस्तों का हार्दिक ते निघा स्वागत। उम्मीद करदा कि बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे, और जेडे दोस्तों ने सानू हुणे ट्यून अप कीता जी, उहनूं ट्यून इन कीता, माफ करना जी, सो उन्हां नूं असीं निघी जिहा आखदे हां, क्योंकि अपना साथ 12 बजे रामस पंजाबी वीकेंड शो दे नाल बन जांदा। 12 तों 1 रामस पंजाबी ते 1 तों 2 सुणदे हो प्रोग्राम नजरिया। मैं थोड़ा होस्ट मजीत सिंह गिल। कोई भी गलबात तुसीं स्टूडियो करनी हुंदी है तो फिर 416-233-7368 जां 8297 टैलीफोन नंबर्स हुंदे ने, 416-233-7368 जां फिर 8297 किसी एक नंबर पर डायल करके तुसीं अपनी गलबात जे कोई कहनी चाहुंदे हो तो कही जा सकती हुंदी है। ट्रैफिक दे विच किते रुकावट पई देखदे हो तो तद भी तुसीं इन्हां नंबर्स ते कॉल कर देनी, तां कि असीं बाकी दोस्तां मित्रां दे नाल ए जानकारी जे सांझी करांगे ते डेफिनेटली उन्हां दा समां जरूर जिहड़ा ओह बचा सकण दे विच सहाई सिद्ध हो सकदा।

लो दोस्तों एक बार तुहानू फिर दस दिए रेडियो प्रोग्राम चढ़दी कला दे नाल तुसी जुड़े होए हो। 4 बजे तक प्रोग्राम दा एंजॉय करोगे ते प्रोग्राम नू स्पोंसर करदे ने मूज ब्लाइंड तो मानसा। मानसा मूज ब्लाइंड तो अज तुहाडे लई इक खुशखबरी लेके आए ने। तुसी अपने घरे परदे लवाउणा चाहुंदे हो। गर्मियां दे विच ब्लाइंड्स दी लोड़ अक्सर ही पैंदी है ते

0: रब जी मेरा बिजनेस नहीं है चलता। बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं बनती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? देव तात्रे नू कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला। भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।
2: होल्डर गंडा सिंह रिपोर्टिंग सर। अंग्रेजी दी लत तोड़ नहीं लाई।
3: पता की मैं भी सच्ची बहुत दुखी आ इहदे तो।
2: बंदा पुछे भी तू शर्मा जे तेनू नहीं आउंदी तू ना बोल।
3: एग्जैक्टली
2: नाले कुत्तियां नू भौंकी जानी अंग्रेजी नाले आउंदी नहीं।
3: पता की गंडा सिंह
2: मेरे मुंह गाला निकल गया बिना गड्डी। फिर मैं कहा भी नहीं मानू समझा गंडा सिंह इत्थे महकां लगियां हुंदियां ते फिर महकां नाल आवाज चली जांदी अगे।
3: माइक
2: ओ मैं कहा
3: हां जी हां जी। पता की गंडा सिंह जी तुसी ही तो हो जेडे अकलमंद हो, मतलब इत्थे आके मेनू मिलदे हो। सारा दिन सोचो मेरे नाल किद्दां बैठे।
2: मैं दरअसल अज इस करके आया, मेरे को टाइम है नहीं जान दा। मैनू ये दस पी डेट की हुंदी है।
3: डेट मतलब की किसे गोरी नाल चल रहे हो?
2: पता कोई नहीं मैनू आंदी आई वांट टू गो टू डेट।
3: अच्छा
2: ते मैं क्या भी यार डेट मतलब हुण मैं कैलेंडर लेके जावड़िया। नाराजगी होगी जाहल पीपल फलांटिंग लेटर पटरों ने मैंने क्या।
3: अच्छा
2: मैं क्या भी यार बाला गर्म होने तो पहला मैं पूछा ही
3: डेट ते मतलब के जिवें बार उदे नाल चाह पानी ते कॉफी पीन जिवें चाहिदा
2: ते सीधा कह नहीं मैं फिल्म देखनी अज डेट ते जान दा मतलब। हां
3: ओनू पता नहीं सी ना भी थानू डेट नहीं मतलब पता।
2: अच्छा कोई चक्कर पता की मैं तरन सुधी गल मैं बिना पंजाब ही फोन लाया। मैं क्या यार गोरी डेट डेट करी जांदी ओहो जे मेरा यार उशंदा।
3: हां
2: कहंदा गंडा सिंह तू पंगा पा ले लगदा गोरी लगदा तेनू कचहरी च तरीक तरूक ते भुगतन नू खण नू फिरदी
3: है। मेरे रब्बा
4: तुसीं अपने बिजनेस नू प्रमोट करना चाहुंदे हो? सफलता दी कुंजी साडे कोल है। तुसीं मॉन्ट्रियल टोरंटो या वैंकूवर अंदर अपने बिजनेस दा संदेश देकर कामयाबी दी मंजिल वल जल्दी ही वध सकदे हो। स्पेशल पैकेज दा फायदा उठाउण लई तुसीं साडे हेड आफिस नाल संपर्क करो 416-677-0609 416-677-0609।
5: मैं करला चुगलियां तो
3: सारे
5: डर जो पुलिस छड़ दिंदा ना फिर आप ही महला चेंज कर
3: लेंदा। पर उन्हें तेरे छड़न लगे ने नहीं सोचना भी किथे
5: पैंदियां हुण मैं देखूंगा कि हुण ओह पंजाब पुलिस च है नहीं।
3: हेलो
5: गल नहीं बात नहीं गल करना जो कर मैं आई वॉन्ट टू चेंज माई जॉब एंड गिव मी द ऑप्शंस यू हैव इन योर पॉकेट।
3: तू एवे कर तू ना जेडे ह्यूमन प्रॉप्स नहीं होंदे
5: जी
3: ओ बन जा।
5: ह्यूमन प्रॉप मतलब
3: हां
5: हो गिंदे
3: ह्यूमन प्रॉप्स होंदे ने जिवें कि ना जेडे लग्जरी हाउसेस होंदे ने
5: जी
3: उना दे विच उना नु मतलब जिदा लेट्स से मैं एक ह्यूमन प्रॉप तू एक ह्यूमन प्रॉप है ना उना नु एज अ फैमिली ओ लोग रहंदे ने ठीक है। उना दे उपर पर शर्तां हुंदियां ने। पहली शर्त ए हुंदी है कि जदों उस घर नु कोई खरीदण दे लई आ गया उना नु उस्से वेले ओ घर खाली करना पवेगा छड्डना पवेगा। दूजी शर्त है कि घर जेड़ा ओ इस तरह होना चाहिदा जिवें ओदे विच कोई वी ना रहंदा होए मतलब किसी चीज नु कोई नुकसान नहीं होना चाहिदा। तीजी चीज है जेडे कहिंदे शीशे वगैरह एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिदे ने। चौथी चीज आ कि बेड जेडे ने एदां होने चाहिदे ने जिवें ओदे उपर कदी कोई पहला सुत्ता ही ना होए मतलब बिलकुल नवा लगना चाहिदा घर। हां
5: नहीं एक मिनट
3: हां
5: ए मतलब ओथे घर च रहण दे लई सुख आ के सजा आ
3: चंगे
5: काम दस मेनू
3: चल ठीक है बाद च दस।

0: हाँ हरमन कौरी
1: हाँ
0: दस फिर
1: मैं देख तेरी इस गालू ना सीरियसली हो लगी है
0: हाँ
1: तू एमए कर जेड़े प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स ऑर्गेनाइजर्स नहीं होंदे
0: प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर
1: हाँ मैनेज करना केड़ी चीज होनी चाहिए है बच्चा केड़ी चीज जी फायदा पहुंचाऊगी समर कैंप के दौरान ये सारी चीजा ऑर्गेनाइज कर दे तू बन जा
0: मतलब ये कि भी आपके बच्चे को जब समर कैंप पे जाना है तो क्या चीज चाहिए है फार्मस चाहिए बैग चाहिए दस्ताने चाहिए कोटी ऐसे मेरी गल सुनो ये काम मैं करूंगा तो मतलब बच्चे की मां की करूंगी फिर
1: भाई साहब जब बच्चे की मां नहीं करना तो उन्हें तेनू की करने रखना है
0: यार किद्दां दी मां होगी जेड़ा अपने बच्चे दा चा नहीं करन दई ते ओ मेरे गा ऑर्गेनाइजर लभदी फिरूगी उत्थे
1: हेलो
0: नाले एक मिनट हेलो एक्सक्यूज मी
1: हां
0: जेड़ा ओदा मेन ऑर्गेनाइजर ओ किधर गया
1: जिन्हें
0: बच्चा ऑर्गेनाइज किया पहले
1: एक्सक्यूज मी
0: पापा जी
1: थोड़ा ध्यान ना
0: हो वही मैं कह रहा ना
1: पापा जी कितना का काम करते हुंदे ने दस जरा मेनू
0: भावे कुछ भी दे दे ये थोड़ा
1: लेडीज ऑलवेज बच्चे भी देखन काम भी देखन घर भी देखन डॉलर भी देखन सारा कुछ देखन है हेलो
0: मैडम तू ना बीबी दी साइड ना जा मेरे वाले प्रोफेशन ते आ जवाक पाड़ दे बाद अगले पैसे ना देने फिर कौन जिम्मेवार
1: सिर जरूर पाड़ सकदा बाकी गल्लां दीआं
2: गल्लां मेरे रब जी मेरा बिजनेस नहीं है चलता बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख ले ने कोई गल नहीं बनती बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो
3: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं देव तातले नु कॉल कर रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल फोन कर 416-677-0609 416-677-0609

0: गल दस, तू अपनी पहली गर्लफ्रेंड को छोड़ दी?
1: ओए पागल सीगी।
0: क्यों?
1: ओनु मैं फोन करना, उन्हें फोन चुकने की बजाय बादरी जी ने रिंगटोन ते नची जाना।
2: चल तेनु ना एक होर गल में दा।
3: दादी दादी।
2: तू ऐ कर।
3: हाँ।
2: कीरने कुरने पौने आंदे तेनु?
3: मैं तेरे नाक पे मुखी मारने हैं।
2: रुदाली
3: फिल्म
2: होनी
3: रोन आली स्यापा करना
2: वैसे मतलब काइंड ऑफ इदा एक्चुअली पता की ताइवान दे विच ये चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई हुई है। उदे च की है जेड़े प्रोफेशनल मूर्नर्स हुंदे ने, यानी कि जो लोग इदा खीरने पाउंदे ने उन्हां नूं लेके जांदे ने लोग। जो किसी का ऐसा कोई हैपनिंग हो जाती है ना उत्थे जाके फिर जो प्रोफेशनल लोग ने वह रोक के दिखाते ने कि इदा रोना चाहिए।
3: ये
2: काम कर ला तू,
3: मतलब कह दे भाई साहब बंदा सवेर तो लैके शाम तक कदी किसी के पापे ली कदी किसी के बाबे ली डाडा मारद रवे है। मतलब इथे आग डिगी है तू वे लो भाई है कोई मतलब अजकल तेन लगता है कोई इमानदारी का जमाना है भलाई का जमाना नजर
2: आता
3: सलाह ले ली तो मैं आ करा दे तू पेट स्यापे करने शुरू कर दे
2: पागला जो वड्डा करना हो जलेबियां भी मिलन
3: गिया मेरी तो गल है ये बीबी वाला काम है तेन फिट बहना तू कर ट्राई नाले इतना सिर जहा सुट के लगी रही अगले पता लगना नाले रोंदी है हसदी है तू तो मैनू कोई प्रोफेशन नहीं दस्या ना।
2: हाँ।
3: मैं लव लेक
2: केड़ा
3: ह्यूमन स्केयर क्रो
2: ए तो तेरी पर्सनालिटी दे नाल भी जांदा है
3: क्यों
2: बिल्कुल इदा दा ही हुंदा स्केयर क्रो क्रो तेनु देख के तो वैसे ही बेचारे हार्ट फेल हो जावे भी है ये की है
3: कुछ भी है मैं वादिया लगा भी देखो ये डरना बन के तुसी खेतां च अगले दे खड़े रहो फुलवाड़ी च ते तुसी कां चिड़ियां डाउंदे रहो
2: बिल्कुल
3: है ना।
2: हाँ।
3: काम तां वैसे नहीं जा रहा
2: तेरे तो पर कोई बंदा नहीं डरदा कां चिड़ी मतलब
3: मेरी सुन गल कां चिड़ी ही डराउणे असीं बंदे नहीं डराउणे नाले दूजी गल इह नहीं मैनूं समझ लगी भी भाई साहब जदों तुसीं कां ही डराउणे आ ते सारा दिन उत्थे इक लाते मतलब तुसीं मतलब डरना जां बन के खलोते रहो उहदे नाल चंगा नहीं परां जाके छावें बह जाओ।
2: अच्छा
3: ते जदों कां चिड़ी गाउंदा जापे
2: फोन
3: दो करा
2: हेलो
3: माड़ा कीता
2: अच्छा या चार को कोल ठिकरिया जिया पत्थर रख ले छड़वाई मारिया दूर ही है ना पता की गल्ला
3: गोरे लोग भाई साहब कदी दे कामयाब नहीं
2: पर मैं तेनु एक गल दसा
3: हां जी
2: यही सारे कारण है कि तू आज इत्थे वेला बैठा गल्ला मारदा
3: है क्यों जी
2: होर कोई प्रोफेशन तेरे वास्ते ही है नहीं
3: मतलब
2: भाई साहब एदू सौखियां रोटियां नहीं मिल सकदियां किते
3: जेड़ा आपां करना काम
2: हां
3: रोजी
2: की
3: लत मारी चंगा भाई सत श्रीकाल जी तुहानू जे कोई इन्हां चों पसंद आया प्रोफेशन कर सकते वैसे दुनिया जी काम लोकिंग करदे
2: आ
3: मेरे हिसाब च कोई गल बहुती आई नहीं सत श्रीकाल जी कल नूं फिर मिलदे
2: अच्छा।

0: कॉल करो 416-450-3381 416-457-3381।
1: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो एम 520 24/7 जिन्हें भी प्रोग्राम आंदे ने उन्होंने सुन वास्ते जां देश प्रदेश नू लाइव देखने वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नू www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com। लाइव सुनना चाहते लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहते हो तो ओते क्लिक करो, या फिर अपने IPTV बॉक्स दे उते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो, ओदे उते जाके देश प्रदेश टीवी नु कलेक्ट करो, उत्थे तुसी सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7।